overflowing with the greasy dirt of egotistical pride. With the dust of the feet of the holy, it is scrubbed clean. The mind may be washed away with loads of water, and yet its filth is not removed. It does not become clean. I have met the true Guru, who is merciful forever. Meditating in remembrance on the Lord, I am rid of the fear of death. Liberation, pleasures, and worldly successes are all in the Lord's name. With loving devotional worship, O Nanak, sing his glorious praises. Gauri, fifth melon. The Lord's slave attained the highest status of life, meaning them their soul is enlightened. Those who listen with their minds and ears to the Lord's meditative remembrance are blessed with peace at the Lord's gate, O mortal, Rahu. 24 hours a day meditating the sustainer of the world, O Nanak, gazing on the blessed vision of his darshan, I am enraptured. Gauri, fifth mill. Peace and tranquility have come. The Guru, the Lord of the universe, has brought it. The burning sins of divine departed, O my sinful destiny. Your tongue continually chants the Lord's name. Disease shall depart. Har jugu jugu pagal upai pai ragda aya ram raje har nakas tust hari maria pralada tariam ambikariya nindaka pitade nam deu muklaya jan nanaka isa har sevya antela charaya shalok mahala pella dukdru shukropaya ya suktam na hoi तुम करता करना मई नाई या हाउ करी ना होई बाली हो रही कुदरत बालसिया तेरा अंत न जाए ला क्या रहाओ जातमा ज्योत ज्योत मा जाता कल कलावर पूर रहिया तुम सचा सही सिखात सलियो जिंकड़ी सो पर पाया कौ नाना करत किया वता जो कुछ करना सो कर रहा सोदा रागा समिला पिला एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सुधार तेरा कहा सुगर कहा चिटबा शराब संभाले बाजे तेरे नाद अनेक शंका कहते तेरे बवन हारे कहते तेरे राग परिश्यो कहियां कहते तेरे गवन हारे गवन तुनो पाऊं पनी संतार गवर रजा त्रम द्वारे गावंतुनो चित्कुपक लिख चन्ना लिख लिख द्रम विचारे गावंतुनो ईश्वर ब्रह्म देवी स्वान्त्रे सदा सवारे गावंतुनो इनिंद्रासन वैत्य देवत्यादर नाले गावंतुनो शित समाधि अंदर गावंतुनो सद विचारे गावंतुनो जाति सती संतोगी गावंतुनो वीर करारे गावंतुनो पंडित पंड्रा किशोर जुग जुग वेदन नाले गावंतुनो मोहानिया मन मोहन सूर्य माच पियाले गावंतुनो रतन उपाय त्रे आत्सत्रत नाले गावंतुनो ज्योत महावल सुरा गावंतुनो कनी चारे गावंतुनो कन मंदल ब्रह्मंद कर कर रखे त्रिदारे सही तुनो गावन ज्योतुत भवन राते त्रे बकट रसले और कहते तुनो गावन समय चितनावन ननकिया विचारे सोई सोई सदा सच साईब सच सच नाई हैप्पी होसी जाना जासी राचा जिन रचाई रंगी

या कोई नाई जी जानत सब तेरा किल बिजोगी मिल बिछोड़िया संजोगी मिल जिस नौ तू जने सो जन जनाए हर गुण साखी आख बकनाए जी हर सेविया तिन सुख पाया साजे जी हर नाम समाया तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा वरना कोई तू कर कर वाके जन सोए जाना न गुरमुख प्रगट होई आसा मेला पेला तित सर बारिया वेले निवासा पानी पवक तिने किया पंकज मो पग नाही छलाही हम ते काट डुबियाले मानक ना छे तस मुरमाना हर बिसरा त्रे गुंगालिया रहाओ नहाउ जाति साति नई पड़िया मुड़ा मुगदा जन्म पाया

बिम्बान् दुष्टं के हन्ता तुम हो पुरी चतुर्दशकन्ता कल्प ब्रह्मा अवतारा कल्प शिवजु अवतारा कल्प गर्भ संप्रकाश सकल का किया तमाशा जवन काल जोगी शिव क्यो वेदराज ब्रह्म ज्योतियो जवन काल सब लोक सबरा नमस्कार ही तहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देवदयी चन उपजायो आदंते का अवतरा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिथि को हमारी सकल प्रजा जिनाब सवारी शिवकांग को शिवगुण सुकृतियो सत्रंग को पलमो बट कियो काट काट के अंतर की जनत भले बुरे के पिर पिछनात छिदिते कुंचर स्थूल सपर कृपा दृष्कर फूल संतन दुख पय ते दुखी सुख पय सरुं के सुखी एक की पिर पछनय गट गट के पट पट की जनय जाबुद करा करा कर तरा प्रजा तरा तब दे अपरा जाबा करत करत हो का हूं तुम्हें मैं दे दर सब हूं जेते बदन श्री सब तरिया आप अपनी बुझे उच्चार्य तुम सहित।

केवित्सया प्रतंसंसर एक अनुपस्वरूप रग्भयो रब्कहिवुप अंधग्रह सत्ताकिनी उद्भुतकान बहुरचदिनी कहुं फूल रह वायता कहुं सीमित बीजो संक्र कैता सगृष दृष्टिकाया चंबव आद्युगा स्वरूप सुजंबव आव रचा मेरी तुम करो सिख उबार सिख संगरो दुर्जिते उद्बाट उत्पाता सकर्मले छकरो रंगता ये आसिदुता सरनी पड़े तिंके दुष्ट के दुभाई मरे।

राछा हुए तय सब कला, तुस्तरी स्त्रैन तत्कला, कृपा त्रिस्ता यानि हरियो, तक तप तनक मुहरियो, रेत सीत कर्मो सब होए, दुष्छ छवा सकाय न कोई, एक बार जिन तुम्हें संबरा, कल्पस्ते थवरा, किन्नर नाम तिहारु कहा, दारि दुष दुक्त रहा, करकतमय शरण तिहारी, आपत लेहुबारी, सर तर मोहु सहाय, दुष दुक्त लेहु बचय, कृपा करी हम पर जगमता, ग्रंथ करम पुरन सुव्रता, किल्बिक सकर देखो हरता, दुष्टो क्यों कौचे करता, सीरिया सिधु जप त्याला, पुरं करं क्रंत तत्कला, मन बछत फल पवे सोए, दुख न तिसे